FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026 और उस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 5:56:13 और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हमारी आज की प्रसारण सभा में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचारों का प्रसारण अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए।

हैं श्रोताओं और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले सुनिए माँ भारती की ये वंदना।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में इस भजन के साथ इतना ही। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। आकाशवाणी से लीजिए सुनिए चिंतन। आज के चिंतन का विषय है पर्यावरण और चिंतक हैं डॉक्टर राम विद्रोही। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्यक संस्कृति रही है। भारत के मनीषियों ने वनों के शांत सुरम्य और स्वच्छ वातावरण में मनन और चिंतन कर ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो आज भी जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। जल संचय, वन, वनस्पतियों और पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में अनेक ग्रंथों में चर्चा मिलती है जो हमारे ऋषि मनीषियों के गहन चिंतन और मनन को परिलक्षित करती है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को बड़ा महत्व दिया गया है और उनमें देवताओं का वास माना है। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा पर ही वृक्षों का जीवन निर्भर है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में जल, जंगल और जमीन को भारतीय चिंतन में महत्व दिया गया है। भारतीय चिंतन में वृक्षों में देवताओं का वास माना है। वृंदावन का नाम तो तुलसी वृंदा के नाम ही रखा गया है। घर के पर्यावरण की शुद्धता के लिए आंगन में तुलसी की स्थापना आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, जड़ में जगत कर्ता ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में शिव एवं पत्ती पत्ती में देवताओं को धारण करने वाले वृक्ष, तुम्हें मेरा प्रणाम है। पद्म पुराण में लिखा है कि पादपों के रोपण से मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे पीलू से आरोग्य, नीम से प्रसन्नता, बेलपत्र से शांति, चंपा से सौभाग्य, चमेली से कुल वृद्धि, केवड़े से शत्रुनाश, पीपल से धन और अशोक वृक्ष से लाख यज्ञों का फल मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष 1,00,000 पुत्रों से बढ़कर है। आज भी दशहरे के पर्व पर शमी यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा विधि विधान के साथ करने की धार्मिक परंपरा पाई जाती है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों के प्रति संतति का भाव मनीषियों के चिंतन में मिलता है। वृक्षों के

प्रति ऐसे उदात्त भाव की अभिव्यक्ति दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं मिलती। मत्स्य पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। वैदिक काल में आरण्यक संस्कृति अपने चरम पर थी। ऋग्वेद में एक देव मुनि अर्याणी सूक्ति में कहते हैं, कितने ही प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन इन अरण्यों यानी आश्रमों में होता है। कृषि अनुसंधान निष्पादित होते हैं जो न केवल मानवों वरन प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हैं। इसी तरह दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में कहा गया है कि वनाच्छादित पृथ्वी ही सृष्टि का पालन करती है। जब तक पृथ्वी पेड़ों पहाड़ों वनों से भरी रहेगी तब तक वो मनुष्य की संतानों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करती रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि अन्न से प्राणी मात्र का पोषण होता है, अन्न जल से उत्पन्न होता है और जल प्राप्ति वनों से होती है, अतः वन संवर्धन का यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए। आचार्य वराह मिहिर ने भी वृहत संहिता में बताया है कि किस वृक्ष का क्या क्या लाभ होता है और किस वृक्ष को कहाँ कहाँ लगाया जाना चाहिए। वराह मिहिर के अनुसार घर के समीप या चैत्यों में नीम अशोक पुन्नाग शीरीष आदि वृक्ष लगाना चाहिए। मनुस्मृति में नगरों की सीमाओं पर वट पीपल पलाश सेमल साल एवं खिरणी के वृक्ष लगाने के निर्देश हैं। लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण की भारतीय संस्कृति पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। वृक्षों से ही पर्यावरण संरक्षण होता है। कुल्हाड़ी तो अंधी होती है लेकिन उसके साथ आदमी भी अंधा हो गया है। मनुष्य वृक्षों के बिना जीवित नहीं रह सकता। वृक्ष मानव जीवन के प्राण हैं। वृक्षों के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता तो वृक्ष भी मनुष्य के बिना जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण के लिए वृक्षों के संवर्धन का कानून है और कोई भी व्यक्ति अनुमति के बिना वृक्ष नहीं काट सकता। आवश्यकता होने पर वृक्ष काटने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि जब आवेदक एक वृक्ष के स्थान पर 5 वृक्षों का रोपण और संवर्धन करे, किंतु इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि कल वृक्ष नहीं होंगे तो जल नहीं होगा और जल नहीं होगा तो मनुष्य की संतानें

का विषय था पर्यावरण। चिंतक थे डॉक्टर राम विद्रोही। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से समय हुआ है श्री रामचरितमानस के संगीतमय पाठ का। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं? उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है। जा, तू अजगर

0: श्रोतो अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज के कलाकार थे ए हरिहरन। अब समय है कार्यक्रम कृषि सामायिकी का। कार्यक्रम कृषि सामायिकी में वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं श्री एसएस चौधरी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि सामायिकी।
1: किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केचुआ खाद भी कहते हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से आज भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ रही है, तो लगातार और अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी। इसके लिए रासायनिक खादों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में हर साल हमें जैविक खादों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। जैविक खादों में मुख्य रूप से जो वर्मी कंपोस्ट है, जिसे हम केचुआ की खाद कहते हैं, इसका बहुत महत्व है। एक तो इस खाद में किसी तरह की कोई बदबू नहीं होती, मक्खी मच्छर भी इससे नहीं बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें 2-3% नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस भी 1-2% होता है और पोटास की मात्रा 1-2% तक इसमें रहती है। इस खाद को तैयार करने में मात्र 1.5 महीने का समय लगता है और प्रत्येक माह 1 टन खाद के लिए 100 वर्ग फुट आकार की नर्सरी बेड पर्याप्त होती है। केचुआ खाद की केवल 2 टन मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। अब सवाल उठता है कि केचुआ खाद कैसे तैयार करें। अब इसको तैयार करने की विधि की हम चर्चा करते हैं। जिस कचरे से खाद तैयार की जानी है उसमें से कांच पत्थर धातु के टुकड़े हम अलग कर लें। भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें। बेड को लकड़ी से हल्की सी पीट कर पक्का और समतल बना लें। इस तह पर 6-7 यानी 2-3 इंच मोटी बालू रेत या बजरी की तह बिछा दें। बालू रेत की इस तह पर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तह भी बिछाएं। यदि दोमट मिट्टी ना हो तो फिर काली मिट्टी में रॉक पाउडर पत्थर की खदान का बारीक चूरा मिलाकर भी बिछा सकते। इस पर नारियल की बूछ, गन्ने की पत्ती, ज्वार के डंठल इत्यादि की 2 इंच मोटी सतह बनाई जाए। इसके ऊपर 2-3 इंच पकी हुई गोबर खाद डाली जाए। 100 वर्ग फुट नर्सरी बेड के लिए 4-5 हजार कैचुओं की आवश्यकता होती है। कैचुओं को पकी हुई गोबर की खाद की सतह पर आप फैला दें। कैचुओं को डालने के बाद इसके ऊपर गोबर पत्ती इनकी 6-8 इंच की सतह बनाई जाए। अब इसे मोटी टाट पट्टी से हम ढक दें। झारे से टाट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें ताकि 45-50% इसमें नमी, जैसी कि इसकी आवश्यकता है, इसमें बनी रहे। अधिक नमी या गीलापन रहने से हवा रुक जाएगी और सूक्ष्म जीवाणु और केचुए ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और केचुए मर भी सकते हैं। तो ध्यान रखें कि नमी 50% से ज्यादा ना हो। नर्सरी बेड का तापमान भी 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो गई हो या ढेले बन गए हो तो इसे हाथ से तोड़ते भी रहना चाहिए। सप्ताह में 1 बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करें। 30 दिन बाद छोटे छोटे केचुए दिखना शुरू हो जाएंगे। 31वें दिन इस बेड पर कूड़े कचरे की 2 इंच मोटी तह बिछाएं और उसे नम करें। इसके बाद हर सप्ताह 2 बार कूड़े कचरे की तह पर तह बिछाएं, पानी छिड़क कर नम करते रहें। 3-4 तह बिछाने के 2-3 दिन बाद उसे हल्के से ऊपर नीचे कर और नमी बनाए रखें। 42वें दिन बाद पानी छिड़कना बंद कर दें। इस पद्धति से 1.5 महीने में खाद तैयार हो जाता है। जब खाद तैयार हो जाएगा तो ये चाय के पाउडर जैसा दिखता है और इसमें मिट्टी के समान सौंधी गंध आती है। खाद निकालें और खाद के छोटे छोटे ढेर बना दें, जिससे केचुए खाद की निचली सतह में रह जाए। खाद हाथ से अलग करें। गैती, कुदाली, खुरपी आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि केचुए पर्याप्त बढ़ गए होंगे। केचुए पर्याप्त बढ़ गए होंगे, आधे केचुओं से पुनः वही प्रक्रिया दोहराएं और बचे हुए जो केचुए हैं उनसे पुनः नर्सरी बेड बनाकर खाद बनाएं। तो इस तरह से जो वर्मी कंपोस्ट है, इसका खेती में यदि प्रयोग करें तो रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा।
0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामायिकी। आज की कृषि सामायिकी में वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री एसएस चौधरी। अब कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी

0: हम आप तक पहुंचाते हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पौधों के संरक्षण की बात को लेकर हम अपने कार्यक्रमों को सजोने की कोशिश करेंगे। तो आज सुनते रहिए मेरे साथ उन तमाम कार्यक्रमों को जो आपको जानकारी देते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे, 7 बजे दिल्ली से समाचार हम लाएंगे और 7:05 पर लघुवार्ता का विषय वसुंधरा और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे और 7:20 पर गांधी चर्चा आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। 7:35 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। इस कार्यक्रम में हम रोज आपके लिए जानकारियां लाते हैं, आपको अपडेट करते हैं और ये अपडेशन और जानकारियां देने का काम आज हम आपके साथ करेंगे। आप ये कार्यक्रम आज सुनेंगे मेरे साथ। 8 बजे आप समाचार प्रभात सुनेंगे। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आज भी हम उन तमाम पत्रों को शामिल करेंगे जिसमें आप अपनी फरमाइश भेजते हैं और हम आपको आपके पसंद के गीत सुनवाते हैं। 9:30 पर एक बार फिर कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों को। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुन्ना लाल शर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। तो कार्यक्रम लोकरंग का लुफ्त लीजिए 9:00 आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:00 जिले की चिट्ठी होगी। कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे। 10:05 पर सुगम संगीत का आज का कार्यक्रम होगा और आज आप सुनेंगे पंकज उदास को। पंकज उदास की कुछ गजलें हम कार्यक्रम सुगम संगीत में आपके लिए लेकर आएंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 11 बजे से लगातार आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के दौरान आप महिला कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति दोपहर 1 बजे सुनेंगे और इसके साथ साथ आप शाम 5:30 पर आकाशवाणी से जरूरी जानकारियां और कुछ संदेश सुनेंगे। शाम 5 बजे युवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और हम इसे अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से। इसी तरह आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहेंगे और उन तमाम जानकारियों को आप सुनते रहेंगे जो आज के लिए हमने आपके लिए समाहित की हैं। ये थी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी श्रोताओं जो हमने आप तक पहुंचाई। हम आपको फिर याद दिला रहे हैं कि आज 5 जून है और आज
1: आकाशवाणी पर्यावरण प्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचको नरेंद्र दत्त सेमवाल। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते 8,18,000 कोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी सूरतनगरे 200 शय्यायुक्तं ESIC इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति यत् विशिष्टक्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्यसेवाः प्रदास्यति। प्रधानमंत्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणां उद्घाटनमपि करिष्यति येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम् उन्नत अपशिष्ट व्ययनम् पेट्रोलियम् चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति। सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 77,900,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। एतासु परियोजनासु स्वास्थ्यसेवा नागरिक विमानयानं पर्यटनं अवसंरचना संपर्कः जनकल्याणं इत्यादीनि विविधक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नमो विमानस्थानकस्य नमो चिकित्सालय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है

0: और रोग से भी मुक्ति देता है। और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश

0: से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तराया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री बल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो।
2: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं और वक्त है लघुवार्ता का। आज की लघुवार्ता का विषय है वसुंधरा। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हम एक मोटी सी बात आप श्रोताओं को साफ तौर पर बता देते हैं कि यदि वृक्ष हैं तो हम हैं और अगर वृक्ष नहीं हैं तो हम नहीं हैं। और ये मोटी सी बात जितनी आसानी से हर एक इंसान को समझ आ जानी चाहिए, वही इस प्रकृति के संरक्षण का सबसे आधारभूत नियम है। ये प्रकृति आपको जो कुछ देती है उसके पीछे इन वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण दिवस पर अगर हम आपसे चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि वृक्ष आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं और बरसने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि इन वृक्षों का सारा जीवन केवल मानसूनी बारिश पर डिपेंड करता है। और ये अगर अपना जीवन बचाते हैं तो हमें साल भर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निःशुल्क देते हैं। ये वो तमाम सारे जल स्रोतों को केंद्रित करके उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इकोसिस्टम में वृक्ष और मानव का एक ऐसा गठजोड़ है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर हम हमारे शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में इनको पूजनीय बताया गया है। हमने कहा है कि कई वृक्षों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसके पीछे की जो मानसिकता है वो यही है कि हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो उस समय के हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने शोध करके पाया कि इंसान और वृक्ष ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तभी हमने अपने त्योहारों पे इन्हें शामिल किया। बड़ पूजा, आंवला पूजा, नीम पूजा, शमी पूजा, पीपल पूजा, ये तमाम सारी जो बातें हमने कही हैं इन्हें ऐसे ही हवा में नहीं कहा गया। इन्हें इसलिए कहा गया ताकि हम इन वृक्षों के महत्व को समझ सकें। आप एक जानकारी रखते हैं, सबको मालूम है, हम ये नर्सरी से लेकर के और कक्षा 5 तक पढ़ लेते हैं। और जानकारी सीधी सी है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आप समझिए कि प्रकृति ने, पर्यावरण ने, ईश्वर ने, इस धरा ने क्या इंतजाम किया है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी इनकी महत्वता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये जीवन है और इस जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। आप हम सब मिलकर इस पर्यावरण को तब संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं जब हम पौधों को वृक्ष बनाने का संकल्प पूरा करें। कहा यह भी जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान फल देता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे का लॉजिक है। आप समझिए कि एक वड़ का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक नीम का वृक्ष या

एक आंवले का वृक्ष या और तमाम उन औषधियों से परिपूर्ण वृक्ष जो सालों साल जीवित रहता है और न जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को वो ऑक्सीजन देता है। तो उसका महत्व हुआ है या नहीं हुआ। आज पर्यावरण दिवस है, इस पर्यावरण दिवस पर आप अगर इतनी सी जानकारी समाहित कर एक संक्षेप में ये समझ लेंगे कि इंसान और वृक्ष पर्यायवाची हैं, इंसान का दूसरा रूप ये वृक्ष हैं, तो ये पर्यावरण को आप महत्व देना सीख जाएंगे। हमने आपको बहुत मोटे शब्दों में बताया कि अगर वृक्ष हैं तो इंसान है और अगर वृक्ष नहीं है तो इंसान नहीं है। हमने आपको ये भी बताया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ये वृक्ष ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो आप इस बात को समझिए, इनके महत्व को जानिए, आज के पर्यावरण दिवस को पहचानिए और जागरूक बनिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी और लघु वार्ता पसंद आई होगी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट

0: वे भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन

आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

0: गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं गांधी जी की आत्मकथा के अंश।
1: वकालत का धंधा मेरे लिए गौण वस्तु थी और सदा गौण ही रही। नेटाल में अपने निवास को सार्थक करने के लिए तो मुझे सार्वजनिक काम में तन्मय हो जाना था। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही नहीं बैठा जा सकता था, उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से ही उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मैंने अब्दुल्ला सेठ से सलाह की, दूसरे साथियों से मिला और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। उसके नामकरण में थोड़ा धर्म संकट था। इस संस्था को किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था। मैं ये जानता था कि कांग्रेस का नाम कंजर्वेटिव पुराणपंथी पक्ष में अप्रिय था, पर कांग्रेस हिंदुस्तान का प्राण थी, उसकी शक्ति तो बढ़नी ही चाहिए। उस नाम को छिपाने में अथवा अपनाते हुए संकोच करने में नामर्दी की गंध आती थी। अतएव मैंने अपनी दलीलें पेश करके संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया और सन 1894 के मई महीने की 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। दादा अब्दुल्ला का ऊपर वाला बड़ा कमरा भर गया था। लोगों ने इस संस्था का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसका विधान सादा रखा था, चंदा भारी था, हर महीने कम से कम 5 शिलिंग देने वाला ही उसका सदस्य बन सकता था। धनी व्यापारियों को रिझाकर उनसे अधिक से अधिक जितना लिया जा सके लेने का निश्चय हुआ। अब्दुल्ला सेठ से महीने के 2 पौंड

0: दूसरे भी दो सज्जनों से इतने ही लिखवाए। मैंने सोचा कि मुझे तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने महीने का 1 पौंड लिखाया। मेरे लिए ये कुछ बड़ी रकम थी, पर मैंने सोचा कि अगर मेरा खर्च चलने ही वाला हो तो मेरे लिए हर महीने 1 पौंड देना अधिक नहीं होगा। ईश्वर ने मेरी गाड़ी चला दी। 1 पौंड देने वालों की संख्या काफी रही, 10 शिलिंग वाले उनसे भी अधिक। इसके अलावा सदस्य बने बिना कोई अपनी इच्छा से भेंट के रूप में जो कुछ दे सो स्वीकार करना था। अनुभव से पता चला कि बिना तकाजे के कोई चंदा नहीं देता। डरबन से बाहर रहने वालों के यहां बार बार जाना असंभव था। आरंभ शूरता का दोष तुरंत प्रकट हुआ। डरबन में भी कई चक्कर लगाने पर पैसे मिलते थे। मैं मंत्री था, पैसे उगाहने का बोझ मेरे सिर था। मेरे लिए अपने मुहर्रर का लगभग सारा दिन उगाही के काम में ही लगाए रखना जरूरी हो गया। मुहर्रर भी दिक आ गया। मैंने अनुभव किया कि चंदा मासिक नहीं वार्षिक होना चाहिए और वो सबको पेशगी ही दे देनी चाहिए। सभा की गई, सबने मेरी सूचना का स्वागत किया और कम से कम 3 पौंड वार्षिक चंदा लेने का निश्चय हुआ। इससे वसूली का काम आसान बना। मैंने आरंभ में ही ये सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर नहीं करने चाहिए। दूसरे कामों के बारे में लोगों का विश्वास चाहे किया जाए, पर पैसे के वादे का विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने देख लिया था कि लिखाई हुई रकम चुकाने का धर्म लोग कहीं भी नियमित रूप से नहीं पालते। इसमें नेटाल के भारतीय अपवाद रूप नहीं थे, अतएव नेटाल इंडियन कांग्रेस ने कभी कर्ज लेकर काम किया ही नहीं। सदस्य बनाने में साथियों ने असीम उत्साह का परिचय दिया था। इसमें उन्हें आनंद आता था, अनमोल अनुभव प्राप्त होते थे। बहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरंत पैसे दे देते थे। दूर दूर के गांवों में थोड़ी कठिनाई होती थी, लोग सार्वजनिक काम का अर्थ नहीं समझते थे। बहुत सी जगहों में तो लोग अपने यहाँ आने का न्योता भेजते और प्रमुख व्यापारी के यहाँ ठहराने की व्यवस्था करते। पर इन यात्राओं में एक जगह शुरू में ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां एक व्यापारी से 6 पौंड मिलने चाहिए थे, पर वो 3 से आगे बढ़ता ही न था। अगर इतनी रकम हम ले लेते तो फिर दूसरों से अधिक न मिलती। पड़ाव उन्हीं के घर था, हम सब भूखे थे, पर जब तक चंदा न मिले भोजन कैसे करें। उन भाई को खूब समझाया मनाया, पर वे टस से मस न होते थे। गांव के दूसरे व्यापारियों ने भी उन्हें समझाया। सारी रात झकझक में बीत गई। गुस्सा तो कई साथियों को आया, पर किसी ने विनय का त्याग न किया। ठेठ सवेरे वे भाई पिघले और उन्होंने 6 पौंड दिए, हमें भोजन कराया। ये घटना टोंगाट में घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी किनारे पर ठेठ स्टेंगर तक और अंदर की ओर ठेठ चार्ल्स टाउन तक पड़ा। इससे चंदा वसूली का हमारा काम आसान हो गया। पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करने का नहीं था, आवश्यकता से अधिक पैसा न रखने का तत्व भी मैं समझ चुका था। सभा हर हफ्ते या हर महीने आवश्यकता के अनुसार होती थी। उसमें पिछली सभा का विवरण पढ़ा जाता और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती। चर्चा करने की और थोड़े में मुद्दे की बात कहने की आदत तो लोगों को थी ही नहीं। लोग खड़े होकर बोलने में झिझकते थे। सभा के नियम समझाए गए और लोगों ने उनकी कदर की। इससे होने वाले अपने लाभ को वे देख सकते थे और जिन्होंने पहले कभी सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत नहीं थी, वे सार्वजनिक कामों के विषय में बोलने और विचारने लग गए। मैं ये भी जानता था कि सार्वजनिक काम करने में छोटे छोटे खर्च बहुत पैसा खा जाते हैं। शुरू में तो मैंने निश्चय कर लिया था कि रसीद बुक तक न छपवाई जाए। मेरे दफ्तर में साइक्लो स्टाइल मशीन थी, उस पर रसीदें छपा ली। रिपोर्ट भी मैं उसी तरह छपा लेता था। अब तिजोरी में काफी पैसा जमा हो गया, सदस्य बढ़े, काम बढ़ा, तभी रसीद आदि छपाना शुरू किया। ऐसी किफायत हरेक संस्था के लिए आवश्यक है, फिर भी मैं जानता हूं कि हमेशा ये मर्यादा रह नहीं पाती। इसीलिए इस छोटी सी उगती हुई संस्था के आरंभिक निर्माण काल का विवरण देना मैंने उचित समझा। लोग रसीद की परवाह नहीं करते थे, फिर भी उन्हें आग्रह पूर्वक रसीद दी जाती थी। इसके कारण आरंभ से ही पाई पाई का हिसाब साफ रहा और मैं मानता हूं आज भी नेटाल कांग्रेस के दफ्तर में सन 1894 के पूरे पूरे ब्योरे वाले बही खाते मिलने चाहिए। किसी भी संस्था का बारीकी से रखा गया हिसाब उसकी नाक है। इसके अभाव में वो संस्था आखिर गंदी और प्रतिष्ठा रहित हो जाती है। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा असंभव है। कांग्रेस का दूसरा अंग उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना था। इसके लिए कॉलोनियल बार इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। नवयुवक ही मुख्यतः इसके सदस्य थे, उन्हें बहुत थोड़ा चंदा देना होता था। इस संस्था के द्वारा उनकी आवश्यकताओं का पता चलता था और उनकी विचार शक्ति बढ़ती थी। हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ उनका संबंध कायम होता था और स्वयं उन्हें भी समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता था। यह संस्था वाद विवाद मंडल जैसी थी। इसकी नियमित सभाएं होती थीं और उनमें वे लोग भिन्न भिन्न विषयों पर अपने भाषण करते और निबंध पढ़ते थे। इसी निमित्त से एक छोटे से पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का तीसरा अंग था बाहरी कार्य। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों में और बाहर इंग्लैंड और हिंदुस्तान में नेटाल की सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालने का काम होता था। इस उद्देश्य से मैंने दो पुस्तिकाएं लिखीं। पहली पुस्तिका का नाम था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती। उसमें नेटाल निवासी भारतीयों की स्थिति का साधारण दिग्दर्शन प्रमाणों सहित कराया गया था। दूसरी पुस्तिका का नाम था भारतीय मताधिकार एक विनती। उसमें भारतीय मताधिकार का इतिहास आंकड़ों और प्रमाणों सहित दिया गया था। ये दोनों पुस्तिकाएं काफी अध्ययन और परिश्रम के बाद लिखी गई थीं। इनका फल भी वैसा ही मिला। इनका व्यापक प्रचार किया गया था। इस कार्य के निमित्त से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के मित्र पैदा हो गए। इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में सब पक्षों की तरफ से मदद मिली, कार्य करने की दिशा प्राप्त हुई और उसने निश्चित रूप धारण किया।
1: गांधी जी की आत्मकथा के इस अंश के बाद आइए सुनते हैं बापू का प्रिय भजन।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार शिवपुरी जी हाँ, मैं हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और यकीनन देश परिवार और समाज के लिए काम कर रहे होंगे। जानकारियों का ये अद्भुत कार्यक्रम हम रोज सुबह 7:45 पर आपके साथ शेयर करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। सुबह घर से निकलने से पहले आपको तमाम वो जानकारियां देते हैं जो जानकारियां आपको जानना जरूरी है। अलग अलग रेडियो मित्र आपसे मुखातिब होते हैं और अपने तरफ से जो जानकारियां होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। ये जानकारियों का सिलसिला हम आप तक पहुंचाएंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहले आपको यही याद दिला देते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वृक्ष हैं तो मनुष्य है और मनुष्य हैं तो वृक्ष है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और दोनों एक दूसरे के अगर पर्यायवाची हैं तो कैसे हैं? छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं कि मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ गए सिद्धांत? तो ये प्यारा सा छोटा सा एक अद्भुत नियम है प्रकृति का, इस पर्यावरण का, जो हमें जीवित बनाए हुए है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो आप एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को बचाएंगे, अपने सामने वृक्ष के जीवन को बचाएंगे, ये उम्मीद करना हमारा कर्तव्य भी है और आपका और हमारा धर्म भी है। अब सिलसिला जब जानकारियों का है तो शुरुआत कर देते हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको हम देना चाहते हैं, आपको अपडेट करना चाहते हैं और वो तमाम जो जानकारियां हैं उसमें हम आपको किसानों से जो जुड़ी हुई जानकारी है उससे शुरुआत करते हैं। किसानों को खरीफ सीजन के दौरान समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि विभाग के द्वारा जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान जिले में विभिन्न प्रकार के 34,013 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण उपलब्ध है, जिससे किसानों को आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में उपलब्ध उर्वरकों में 9,973 मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है, 3,536 मीट्रिक टन डीएपी मौजूद है और 6,026 मीट्रिक टन एनपीके मौजूद है, 14,196 मीट्रिक टन SSP तथा 282 मीट्रिक टन MOP शामिल है। अब आप अगर किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब अगली जानकारी, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार घरेलू LPG गैस सिलेंडरों के अवैध व्यवसायिक उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खाद्य विभाग द्वारा शहर में व्यापक छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से घरेलू उपयोग के 20 सिलेंडर जब्त किए गए और उन पर कानूनी वैधानिक कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग के दल द्वारा माधव चौक, गुरुद्वारा चौक, पुरानी शिवपुरी, पुराना बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड, AB रोड क्षेत्र स्थित 10 से अधिक होटलों, रेस्टोरेंटों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए गए और अगर वहां अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की गई। अब देखिए, घरेलू गैस का उपयोग सिर्फ हम घरेलू जो खाना बनाते हैं उस पर कर सकते हैं। व्यावसायिक गैस के लिए LPG का अलग सिलेंडर है, उसका अलग दाम है, उसकी सरकारी व्यवस्था अलग है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो कानून का उल्लंघन करते हैं और आप किसी भी समय कानून की निगरानी में आके अपने आप पर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए और कानून का पालन कीजिए ताकि गैस की किल्लत न घरेलू हो और न व्यावसायिक। तो ये जानकारी हमने आपको दी। परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त श्री उमेश जोगा ने जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व वसूली, परिवर्तन कार्रवाइयों, यात्री सुरक्षा एवं विभागीय व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा ने उन्हें जिले की जानकारी दी। परिवहन आयुक्त श्री उमेश जोगा ने फिटनेस शाखा, ड्राइविंग लाइसेंस शाखा एवं पंजीयन शाखा का निरीक्षण कर कार्यालय में
संधारित वार्षिक अभिलेखों तथा महत्वपूर्ण रिकॉर्डों का परीक्षण किया और उन्होंने इस मौके पर कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो जैसा कि परिवहन नियम कहता है, उसी के तहत हमारे वाहनों का संचालन होना चाहिए और परिवहन के मालिक जो है, जो बसों के मालिक हैं, ट्रकों के मालिक हैं, ऑटो के मालिक हैं, निजी गाड़ियों के मालिक हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलों के मालिक हैं, उन्हें परिवहन निगम के, परिवहन विभाग के जो नियम हैं उनका अनुपालन करना आवश्यक है। विद्युत प्रवाह, ये एक ऐसी समस्या है कि किसान चाहता है कि उसके खेत में सिंचाई के लिए बिजली मिल जाए तो वो अपने खेतों को सिंचित कर सके, और घरेलू लोग जो अपने कुछ ज़रूरी काम होते हैं, जैसे किसी को प्रेस करना है या किसी को और कुछ काम करना है, तो ये जानकारी हम इसलिए देते हैं ताकि आपको ये पता होगा आपके क्षेत्र में आज विद्युत प्रवाह प्रभावित होने वाला है तो कब और कितने बजे होने वाला है। आवश्यक रखरखाव का कार्य किए जाने हेतु 33 KV फतेहपुर फीडर से 11 KV न्यू बस स्टैंड मनियर एवं 11 KV फतेहपुर फीडर से 5 जून 2026 को विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। उक्त फीडरों के बंद रहने से 5 जून को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रीराम कॉलोनी, रघुवंशी कोठी, पौरी चौराया, गायत्री कॉलोनी, हाथी खाना, सिटी सेंटर कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, अमृत विहार कॉलोनी, बस स्टैंड से संबंधित क्षेत्र, मनियर बीज गोदाम, दुबे नर्सिंग नर्सरी, लाल माटी, मुदगल कॉलोनी, फतेहपुर शारदा कॉलोनी, फतेहपुर गांव, जाटव मोहल्ला, परिहार मोहल्ला, कोठी नंबर 26 के आसपास सभी

क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो ये हमने आपको बिजली से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेट कर दिया। अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी के निर्देश अनुसार तथा श्रीमती रंजना चतुर्वेदी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के मार्गदर्शन में गत दिवस खेल स्टेडियम शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित वॉलीबॉल खिलाड़ियों को नुपुर राठौर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल शिवपुरी द्वारा पॉस्को एक्ट नालसा एसिड हमले से पीड़ित विधिक सेवा योजना भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता स्वतंत्रता न्याय एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखे तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो ये जानकारी जो विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी थी वो भी हमने आपको दी। अब हम आपसे ये कहते हैं कि जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की हों, शहरी क्षेत्र की हों या अन्य हमारे नागरिकों की समस्याएं हैं, उनको प्रशासनिक तौर पर शासन के निर्देश अनुसार बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया जा रहा है। और हम जिला कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के प्रयासों की बात करें तो वह अपने प्रयास से जनता तक पहुंचकर उन समस्याओं के निराकरण हेतु काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने तथा जन समस्याओं को त्वरित निराकरण के उद्देश्य से रात्रि चौपालों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व पिछोर श्रीमती ममता शाके द्वारा जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायत पुनावली में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। ग्रामीणों की समस्या सुनकर त्वरित निराकरण किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी तथा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। चौपाल में फौती नामांतरण, राशन वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पशु केसीसी, अपार आईडी, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त, राशन कार्ड में नाम जोड़ने सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान कुल 27 समस्याओं का मौके पर निराकरण कर दिया गया। अब चलते चलते बात मौसम की भी करेंगे और आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो उससे संबंधित कुछ बात भी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जैसा हम आपको याद दिला रहे हैं कि 5 जून को है, और 5 जून को अगर पर्यावरण को याद करते हैं तो सिर्फ याद करके छोड़ मत दीजिए, समझ जाइए कि ये पर्यावरण है तो हम हैं, ये वसुंधरा है तो हम हैं, ये पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है, वरना सब कुछ बेकार है। और न जाने क्यों इसकी अनदेखी हम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। कहा जाता है कि हम अगर एक पौधा लगाते हैं और उसे वृक्ष बनाते हैं तो वो 100 पुत्रों के समान फल देता है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं या इस बात को समझते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको समझा देते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जो उस समय के वैज्ञानिक माने जाते हैं, कि साफ तौर पर आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने कहा कि वृक्ष हमारे पूजनीय है तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे ये बताया गया है कि ये जो वृक्ष हैं ये मानव के जीवन के पर्यायवाची हैं। अगर ये पर्यावरण में मौजूद हिस्सा इस पर्यावरण से काफूर होगा, नेस्ता नाबूद होगा, खत्म होगा, तो मानव का जीवन अस्तित्वहीन हो जाएगा, और इसीलिए उन्हें पूजनीय बताया गया। खासतौर से कुछ वृक्ष जो बराबर रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उनमें वड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, और जो तमाम उपयोगी वृक्ष हैं उनको पूजनीय कहा गया है। पूजनीय तो हर वो वृक्ष है जिसमें हरे पत्ते लगते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि पर्यावरण में वो भी सांस लेते हैं। आप उनके अंदर की संरचना को वैज्ञानिक तौर पर समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पर्यावरण में मौजूद ये हरे वृक्ष, इनकी टहनियां, इनके सब तमाम जो आंतरिक संरचना है वो पूरी तरह से मानवीय संरचनाओं के आधार को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि वहां भी पानी वो जमीन से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं,
तो वो भी सजीव हैं, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पौधों को वृक्ष बनाइए। चलते चलते मौसम की बात, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश भी हो सकती है और 8:30 से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अनुमान बताया है कि शिवपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में तकरीबन 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दौड़ सकती हैं, तो आप अगर इस दौरान कहीं जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, अगर ऐसा देखने में आता है तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें। बहरहाल हम आपसे चाहते हैं विदा और ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होगे, मुस्कुरा रहे होगे, समाज परिवार और देश के लिए काम कर रहे होगे। नमस्कार शिवपुरी।

0: शिवपुरी।
1: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
6: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
6: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की

FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं और आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल, मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम का शुभारंभ आज करेंगे हम पर्यावरण दिवस। जी हाँ, 5 जून 2026 आज का वो दिन जो विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है, और पर्यावरण है तो हम हैं, ये बात हम आपको दोहरा कर याद करा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक पौधा वृक्ष बनता है तो आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देता है तो हम जीवित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस जगत में, इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प जरूर पूरा करिए। अपने जीवन का ये उद्देश्य अगर आप पूरा करते हैं तो यकीनन पर्यावरण को बहुत कुछ दे जाते हैं। और ये एक पौधा जो वृक्ष बनता है, वो यकीन जानिए कि आपके प्राकृतिक संतुलन को, चाहे वो जल संरक्षण हो, जल के शुद्धिकरण की बात हो, या मानव को ऑक्सीजन देने की बात हो, वो यकीनन पूरा करता है। आकाशवाणी है और हम इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि हम आप श्रोताओं को कहीं ना कहीं जागृत कर सके, जानकारी दे सकें, और ये जो जानकारी है वो हमारे जीवन से जुड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप उम्मीद से सुनेंगे और कर्तव्य से पूरा करेंगे तो यकीनन स्थितियां परिवर्तित होंगी। आप सुनिए प्यारा सा गीत, आप सबकी पसंद और

फिल्म हीरो का ये गीत लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज, आनंद बख्शी ने लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर सुबह के 9 बजे है और आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। और लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुन्नालाल शर्मा के साथ लोकगीत। इसके अलावा हमारे दूसरे कलाकार होंगे कार्यक्रम लोकरंग में मोहन सिंह यादव। तो सबसे पहले सुनते हैं मोहन सिंह यादव से कुछ लोकगीत और उसके बाद मुन्नालाल शर्मा से आपको लोकगीत सुनाएंगे कार्यक्रम लोकरंग में। बने रहिए।

मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए हुए कुछ लोकगीतों को अब आप कार्यक्रम लोकरंग के दूसरे हिस्से में सुनिए मुन्नालाल शर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। साथ ही हमने आपको सुनवाए मुन्नालाल शर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। मुन्नालाल शर्मा के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग यहीं संपन्न हुआ। अब आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आपको याद दिला दें कि पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पर हम पौधों को वृक्ष बनाने का संकल्प लेते हैं। थोड़े दिन बाद बारिश शुरू होगी और बारिश के उन दिनों में हम और आप अगर एक पौधा रोप कर उसे संरक्षित कर वृक्ष बनाते हैं तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें स्वस्थ जीवन देना है और अपनी मानवता को सहेज कर रखना है। न केवल मानवता को सहेज कर रखना है बल्कि इंसान के वजूद को कायम रखने की चुनौती भी स्वीकार करनी है। पर्यावरण और पेड़ हमारे एक दूसरे के पूरक हैं। हम अगर हैं तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम हैं। आप सब जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और वही हमारे प्राणवायु के रूप में काम आती है। हम जीवित रहते हैं और अपना काम कर पाते हैं। तो आप इसको बेहतर अच्छे तरीके से समझते हैं तो एक पौधे को निश्चित तौर पर आप वृक्ष में तब्दील करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हुए आप तक पहुंचाते हैं आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये गीत सुनना पसंद किया है अशोक कुमार, देवेंद्र कुमार, गीता कुमारी और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन। पत्र आया है न्यू ब्लॉक शिवपुरी से। छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के सदस्य इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये अनुरोध भेजते हैं। साथ ही इसी गीत को एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश, कार्तिक और स्वाति प्रयाग, ललिता और उनके साथ नारायण भाऊ खर्चे और उस क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागण इस गीत को सुनना पसंद करते हैं। कृष्ण प्रसाद उपाध्याय, अभिषेक कटियार, मुनीश शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने भी गीत सुनने की फरमाइश भेजी है और ये पत्र हमें आया है तुलसीनगर शिवपुरी से। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हम तक पहुँचा है और फरमाइश करते हैं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ललिता, गणेश, संजना, मालती, स्वाति और प्रयाग के साथ उनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रूपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत NH 347 पीके हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को 2 लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका

0: समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्य खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल

मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं श्रोताओ और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई कुछ गजलें। आइए सबसे पहले कार्यक्रम सुगम संगीत में पंकज उदास से सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे थे पंकज उदास को। पंकज उदास की इस गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको याद दिला देते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है। आज 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस ही एक दिन नहीं है जहां हम पर्यावरण को याद करते हैं या फिर पर्यावरण की जरूरत महसूस करते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का पर्यायवाची है, और अगर इंसानी सभ्यता इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर मौजूद है, तो उसके पीछे वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि उनके बिना ये कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष इंसानी जीवन को प्राण वायु देते हैं, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। अगर हम एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प लें और यकीनन इसको मुहिम में बदल दें, तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा तेजी के साथ परिवर्तित होने लगेंगी। आप देखेंगे कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को हम न केवल नीचे ला सकते हैं, बल्कि अगर हम अपने आसपास हरियाली पैदा कर दें तो हम अपनी आंखों को एक बेहतर दृश्य दे सकते हैं, एक बेहतर स्वस्थ जीवन आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो ये छोटी सी बात, अगर आप आज संकल्पबद्ध होकर एक मुहिम के रूप में इसे सुचारू करें और आने वाले कुछ वर्षों तक एक पौधे को, सिर्फ एक पौधे को, हर एक इंसान अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझते हुए वृक्ष बनाने का संकल्प ले, तो निश्चित तौर पर आप एक आमूलचूल परिवर्तन आसपास जरूर देखेंगे। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये प्यारा संगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी लता मंगेशकर से आपने गीत सुना। आनंद बख्शी का गीत था, आरडी वर्मा का संगीत था, और कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लगातार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम छाया पाठक की प्रस्तुति है।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं छाया पाठक। श्रोताओं, हमसे बातचीत करने के लिए हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से, और कार्यक्रम का प्रसारण होता है अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
2: हेलो
1: हेलो
2: जी मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: समद सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
1: समद सिंह,
2: सौ मत सिंह जी।
1: अच्छा, एक आध मत नहीं है, सीधे सौ मत है
2: मैडम, बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने, सीधे सौ मत।
1: एक आध मत नहीं है सीधे सौ मत है। चलिए, आपके नाम के पीछे कुछ आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ऐसा नाम क्यों रखा?
2: अब कभी सोचा तो नहीं, मतलब यूं जनरल तो ख्याल आया, लेकिन कभी घर वालों से पूछा नहीं।
1: भाई इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है मेरे हिसाब से।
2: हाँ नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है
1: ना, सीधे ये मत से मतलब नहीं है, विचार से सौ
2: नहीं,
1: मत
2: नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: चलिए,
2: मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आज कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
2: जी बिल्कुल। हाँ। तो आप मुझे सुनवाइए, अभी अभी सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच से गई हैं। तो एक इनका गीत है, रफी साहब के साथ में है, मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है वो। वो गीत आप मुझे सुनवाइए, खय्याम साहब ने इसका संगीत निर्देशन किया है।
1: इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: ठहरिए हो।

0: उसमें आलू आलू तो चले जाइएगा।
1: अरे बहुत बढ़िया गाना आपने पसंद किया।
0: हाँ वही तो कहा मैंने, मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है ये।
1: कार्यक्रम का आरंभ भी इतने अच्छे गीत से हो जाए तो फिर कार्यक्रम का मजा दुगना हो जाता है ना।
0: जी,
1: मोहब्बत इसको
0: बिल्कुल
1: कहते
0: ना।
1: हैं, ठहरिए होश में आऊं तो चले जाइएगा।
0: हाँ
1: जी
0: ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा।
1: आपने फिल्म देखी है?
0: नहीं मैडम, मैं फिल्में सुनता हूँ। मैं शायद आपको याद नहीं होगा, पहले भी आपसे बात हुई है, मैं
1: हाँ हाँ
0: मतलब
1: हुई है हुई।
0: है ना,
1: जी जी
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मेरा
1: जी
0: संगीत का क्षेत्र है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ मैं। तो
1: जी जी जी
0: हम लोग को जब कोई भी फिल्म को हमें मतलब सुनते हैं, तो हम उसको बिल्कुल ऐसे इस हिसाब से सुनते हैं कि हम लगता है कि हम उसको देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं, फील करते हैं उसको।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: अब आप यूँ समझें कि म्यूजिक का तो एक अपना जादू है, क्योंकि आप दूसरे रूम में अगर बैठे हैं और अगर कोई म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक खुद अपनी कहानी कह देता है कि सीन क्या चल रहा होगा,
1: पहले के गीत इसी तरह बनते थे
0: है ना।
1: सारा। हाँ, हम महसूस करते थे उन गीतों को, समझते थे, जैसे सारी पूरी कहानी बयां हो जाती थी।
0: बयां हो जाती थी,
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: आजकल के गीतों में वो बात नहीं है।
0: हाँ वो तो है, जीता जागता संगीत
1: जी
0: का अपना जादू था, जो सारा चढ़कर बोलता था हमेशा।
1: जी जी जी
0: तो मैं इस गीत को मेरे मेरी श्रीमती जी, अनसुईया जी, मेरे मित्र हैं ब्रजमोहन जी, और भी मेरे जो चाहने वाले हैं, उन सबको मैं सुनवाऊंगा आपके माध्यम से इस गीत को।
1: बिल्कुल सुनिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा, ठहरिए होश में आ लूं।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताएंगे?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। हाँ
0: जी, आज कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: जी बिल्कुल मैडम जी, आज
0: हाँ।
1: जैसे कि कार्यक्रम को जब रिकॉर्डिंग हो रही है, कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण संरक्षण
0: पर्यावरण
1: दिवस मैडम
0: सुरक्षा, जी, उस
1: जी।
0: बारे में कुछ
1: पर्यावरण को
0: कहेंगे?
1: बचाना है हमें, और जो पेड़ है, एक पेड़ माँ के नाम, वो अभी बारिश का समय आने वाला है, तो सभी श्रोता मित्र और देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक पेड़ या पौधा जो भी अपने गार्डन है आसपास, वहाँ जरूर लगाएं। आज एक एक पढ़कर लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे, और इस पर्यावरण से जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन आ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन जो वाहन है बहुत ज्यादा हो गए, जिससे का धुआं निकलता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है।
0: जी।
1: अगर पेड़ अधिक से अधिक रहेंगे तो उससे पर्यावरण को भी हमें बचाना है, और जगह जगह आपके पास में गार्डन है कहीं पर, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाना है मैडम
0: कहीं ना
1: जी।
0: कहीं तो लगाएं पेड़। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। पेड़ पौधों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनसे हम पर्यावरण बचा सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी
1: बिल्कुल। अभी अपन जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, कहीं भी आज नई कॉलोनी का निर्माण होता है तो वहाँ पर गार्डन जरूर बनाया जाता है, तो आसपास जब आप घर के सामने चाहते हैं कि हमारे गार्डन हो, तो उस गार्डन में आपको पौधा भी लगाना है, उसकी देख रेख भी करना है, जैसे हम हमारे छोटे बच्चे का देख रेख करते हैं, वैसे उस पौधे का भी देख
0: देखभाल
1: रेख
0: जरूरी
1: करेंगे
0: होती
1: तो
0: है।
1: वो बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसको सिर्फ 4-5 साल सीखने की आवश्यकता है मैडम
0: जी, चलिए,
1: जी
0: आपके
1: मैडम।
0: विचार सब तक पहुंचे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कुछ श्रोता तो जागेंगे इससे। बताएं,
1: हाँ जी
0: आज
1: मैडम
0: कुछ
1: बिल्कुल।
0: पर्यावरण से ही संबंधित गीत सुनना चाहेंगे क्या?
1: हाँ मैडम जी, गीत है, फिल्म का नाम है, आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा पुराना गाना है, गाने के फिल्म का नाम है एक बार फिर।
0: एक बार फिर।
1: हाँ,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को लुभाए मन

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी बोल रहा हूँ
0: देवीदास जी,
1: जी।
0: जी बताएं कुछ अपने बारे में।
1: बढ़िया है मैडम जी, अरे मौसम बदल रहा है। हाँ
0: मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडक हुई आपके यहाँ?
1: वही ना मैडम जी, एक दो बार हुई है अभी।
0: कल बारिश हुई आपके यहाँ?
1: हाँ
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज कौन
1: तो
0: सा गीत आप पसंद करना चाहते हैं?
1: मुझे यार सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है सरगम,
0: सरगम का।
1: जिसके बोले कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
0: जी, कोयल
1: ये
0: तो
1: मुझे सुनना
0: गर्मियों में ज़्यादा बोलती है।
1: है। हाँ अभी भी कोयल बोल रही है मैडम जी,
0: अच्छा, अभी कोयल बोल रही है, उसी को देख करके आपने गीत सुनना चाह रहे हैं,
1: हाँ
0: ये
1: उसको
0: वाला?
1: देखकर मैंने गीत चुना है
0: जी चलिए, तो सुनवाएंगे कल आपको ये गीत।

0: हेलो जी,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैम। राम बाबू मालवीय, कोलार रोड, भोपाल।
1: भोपाल से ही बोल रहे हैं आप? भोपाल
0: हाँ
1: से
0: जी,
1: बहुत कम फोन लगते हैं हमारे पास।
0: हाँ, भोपाल से लगाते कम है क्योंकि मीडियम में कम सुनते, अपने एफएम के ज्यादा सुनते ना, विविध भारती।
1: हाँ, ये जरूर हो गया,
0: हाँ ये
1: पर
0: है,
1: अब
0: और
1: जब
0: कुछ
1: से
0: भी नो, जिस
1: मोबाइल पे
0: दिन
1: आने लगा है तो
0: एफएम
1: श्रोता,
0: सीट पे, जिस दिन एफएम सीट पे मीडियम वेव भी चलने लगेगा तो बहुत ज्यादा आएंगे भोपाल से।
1: हाँ वो तो है, पर अब मोबाइल में सुविधा उपलब्ध हो गई है तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं
0: हाँ
1: भी
0: इतना कोई
1: कैसे भी आप सुन
0: वो
1: सकते
0: मतलब
1: हैं।
0: वो क्या, आजकल सुनते नहीं ना भोपाल वालों को, आपको याद है ना,
1: तो आप किस में सुनते
0: बताइए
1: हैं?
0: जी। मैं ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, रेडियो भी है मेरे पास।
1: अच्छा, रेडियो भी है आपके पास?
0: हाँ है ना, मीडियम वेव भी सुनता हूँ उसी से।
1: चलें बताएं, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: हाँ, इसकी फिल्म का टाइटल सॉन्ग इसके है जी
1: इश्क फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनेंगे।
0: जी
1: ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी मैम।

0: हेलो,
1: आदमी दीदी सादर नमस्कार।
0: नमस्कार। किससे बात हो रही है हमारी? हाँ
1: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति। जी,
0: शारदा प्रजापति जी।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति
0: जी हाँ, अच्छा जी, बताएं क्या करते हैं आप?
1: दीदी, मैं घर पर रहता हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और थोड़ी दृष्टिहीनता का शिकार हूँ, इसलिए घर पर रहते हुए आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: तो कुछ काम तो होगा आपका, कुछ
1: नहीं, मैं
0: व्यवसाय
1: कुछ
0: कोई?
1: काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनना हूँ।
0: अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके?
1: मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, और बेटे दोनों सीनियर इंजीनियर हैं और अपना काम करते रहते हैं और हमारा भरण पोषण करते हैं।
0: अच्छा, तो आपने काम से विश्राम ले लिया मतलब, है ना?
1: जी, बिल्कुल,
0: अवकाश पे चल
1: मैं पूरी
0: रहे
1: तरह से सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ।
0: हाँ, पूरे सेवानिवृत्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल। जसपाल सिंह साहब ने गीत गाया है, गीत गाता चल और साथी गुनगुनाता चल।
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी,
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: जी। नमस्ते मैम
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल जी,
0: अरविंद अग्रवाल,
1: श्रीनगर
0: कहाँ से? श्रीनगर
1: जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: से। श्रीनगर जिला महोबा। अच्छा, आप महोबा से बोल रहे हैं, यूपी से बोल रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, वहाँ पे आप क्या काम करते हैं?
1: मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस केवल फोन इन
0: सिर्फ फोन इन, ऐसा क्यों?
1: जी, और इतना टाइम नहीं है, बच्चे भी ले लेते हैं, मोबाइल चार्ज में भी लगाना पड़ता है फिर।
0: फोन से कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम थोड़ी देना पड़ता है। कहीं से भी सुने, रेडियो में सुने, श्रोता
1: रेडियो
0: इसमें
1: में नहीं आता।

0: ना आपका भोपाल सीधा सीतापुर रिले करता है
1: नहीं,
0: 11 बजे।
1: वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन जब हम फ़ोन से भी सुनते हैं उसके लिए हमें अलग से टाइम थोड़ी देना है। वो चलता रहे अपने, भले चार्जिंग पे भी लगा है।
0: नहीं वो तो बनता नहीं है, अंदर लगाए हैं चार्जिंग का।
1: अच्छा, अंदर है।
0: सुनते हैं सदापुर राग बंदना है, चिंतन है, ये सुन लेते हैं। जी
1: वो भी तो यहाँ से आता है, सुबह आकाशवाणी भोपाल से, वंदना चिंतन सब यहाँ से भी आता है। उसे भी कभी सुनिए,
0: जी
1: ठीक है? तो गीत आपको जब बहुत पसंद है तो जो गाना आप आज सुनना चाहें जरा गुनगुना के भी बताएं।
0: जी हमराज फिल्म का है, तुम मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी बदल दी। जी
1: नई वाली हमराज, मेरी जिंदगी में
0: मेरी बार
1: आकर।
0: लक्ष्य खन्ना, मनीष वो अमीषा पटेल।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो, फोन करें, गीत
1: नमस्कार
0: सुने।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह
1: जी मैडम, और
0: जी।
1: मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। और यहाँ तो मौसम कल पानी गिरा मैडम, और यहाँ तो एकदम उमस गर्मी भी है, धूप भी है, और हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम। इस टाइप का मौसम बना है, और बादल भी किनारे किनारे किया है मैडम। मौसम में तो परिवर्तन हुआ है यहाँ मैडम।
0: आप कोरबा में ही रहते हैं?
1: चिरमिरी कुरासिया कॉलरी, चिरमिरी कुरासिया
0: अच्छा,
1: कॉलरी जिला
0: चिरमिरी।
1: कोरिया छत्तीसगढ़।
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या जिला है?
1: जी कोरिया जिला है।
0: कोरिया जिला है।
1: जी
0: तो आपके यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है।
1: जी मैडम, यहाँ तो गर्मी खूब पड़ी मैडम। कल तो मेरे को लगता है कल कल शायद नौतपा भी समाप्त हुआ है। कल
0: हाँ, परसों हुए नौतपा,
1: परसों
0: कल।
1: परसों परसों परसों परसों
0: जी जी
1: नौतपा समाप्त हुआ है।
0: हाँ,
1: बहुत
0: परसों
1: गर्मी
0: नौतपा।
1: पड़ रहा था मैडम।
0: गर्मी बहुत थी, पर कल थोड़ी बारिश हुई है। आपके इधर भी शायद हुई होगी।
1: जी इधर हुई
0: उससे
1: है, पानी
0: उससे
1: गिरा
0: थोड़ी सी
1: गिरा है।
0: ठंडक तो आ गई।
1: जी
0: बताएं, आज गीत बारिश
1: फिल्म का
0: से
1: नाम है
0: संबंधित ही
1: सर,
0: सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, नमस्ते मैडम, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में
1: मुझे
0: स्वागत
1: गाना
0: है
1: सुनना है
0: आपका।
1: मैडम।
0: हाँ, गाना सुनवाने के लिए ही हम बैठे हैं। बताएं
1: जी
0: कौन सा
1: जी
0: गाना सुनना चाहते हैं।
1: ये कर्तव्य पिक्चर का, जिंदा
0: कर्तव्य का
1: मामा से प्यारा मेरा मामा।
0: जी, आप मामा बन गए लगता है।
1: जी, मैंने आज पहली बार फोन लगाया। राजू अग्रवाल जी ने मेरे को नंबर दिए है देवास से।
0: हाँ
1: उन्होंने नंबर दिया था कि 10:30 बजे से 11 बजे तक की फरमाइश होती है, मतलब।
0: हाँ
1: तो मैंने आज पहली बार फोन लगाया है।
0: पहली बार लगाया, पहली बार में लग गया।
1: जी,
0: बहुत
1: मैडम पहली
0: भाग्यशाली
1: बार
0: हैं आप
1: लगाया,
0: तो,
1: पहली बार।
0: नहीं तो लोगों का तो दिन भर लगाते रहते हैं, लगता नहीं है फोन। कई श्रोताओं की
1: जी
0: यही शिकायत रहती है कि हम हमेशा फोन लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन लगता नहीं है।
1: हाँ,
0: जी, चलिए, आपको पहली बार में लग गया। अब आप 1 हफ्ते बाद लगाएंगे,
1: जी मैडम,
0: है ना? ठीक है,
1: जी, थैंक
0: चलिए, नमस्कार।
1: यू मैडम।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: हाँ जी, मैं श्रीपाद जाकरे बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे
0: जी?
1: से बोल रहा हूँ मैं,
0: हाँ, पुणे
1: महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से
1: श्रीपाद
0: बोल रहे हैं। नाम फिर से बताएं अपना।
1: जाकरे, श्रीपाद
0: श्रीपद जाखड़े
1: जाकरे। हाँ जी,
0: जी, पुणे में रहते हैं आप?
1: हाँ जी, पुणे में रहते हैं। पुणे में वृद्धाश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं मेरे।
0: तो वहाँ कार्यक्रम सुनते हैं आप, आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ, बहुत दूर का तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। मतलब
0: तो वहाँ कब से रह रहे हैं आप आश्रम में?
1: आश्रम में रह के मुझे 11 साल हो गए मैडम जी। हम वैसे इंदौर भोपाल के रहने वाले हैं,
0: भोपाल के रहने वाले हैं तो
1: इंदौर।
0: आपके आप अकेले हैं?
1: हाँ, यहाँ आश्रम में तो अकेले रहते हैं ना, अभी घर में कोई नहीं है। अभी कोई
0: वैसे आपके परिवार में और कोई?
1: नहीं है, अभी सब चले गए। जब भी तो आश्रम में रहना पड़ रहा है मैडम,
0: जी,
1: मजबूरी है और
0: तो
1: लाइफ है
0: आश्रम में अच्छा
1: थोड़ा।
0: लगता है आपको?
1: हाँ जी, हाँ
0: आपको अच्छा लगता है, आपके साथी, आपकी हम उम्र सब रहते होंगे तो, है ना?
1: वैसे तो हमसे सभी बड़े ही हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ हाँ,
0: जी,
1: उम्र में।
0: चलिए, तो ये जो भी आप गीत आज सुनेंगे वो सबको सुनाइएगा
1: जी
0: और
1: जरूर,
0: सबको भी कहिएगा फोन लगाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हाँ। मुझे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शिकारी फिल्म का गाना सुनना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया हुआ।
0: उसके तो बहुत से गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए। आपको शिकार करने को आए, शिकार हो गए वो, वाह।
1: नहीं, शिकारी फिल्म का।
0: हाँ, शिकारी का ही ये गाना है, तो आप बताएं कौन सा सुनिए।
1: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे,
0: जी
1: दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, ये वाला गाना है।
0: ठीक है, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। सबको सुनवाइएगा
1: शुक्रिया।
0: आप ये गीत और सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम
0: मैं
1: जी?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ, ये तो हम तो वैसे बहुत रोज में फोन करते हैं, तो हमको सुनने को मिलेगा ना कल जी?
0: बिल्कुल मिलेगा, कल आप सुनेंगे आपकी पसंद का ये गीत।
1: एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे, निवेदन है, मतलब हमारा सुनवाइएगा। कारण पहले हमारा 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजाया ही नहीं, प्रसारण हुआ ही नहीं
0: नहीं, कई
1: हमारा।
0: बार ऐसा होता है, देखिए, कि श्रोता हम जैसे कुछ एक्स्ट्रा में भी कॉल हम रिसीव कर लेते हैं, कभी किसी का कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका नहीं ले पाते हैं, या कभी समय ज़्यादा हो जाता है। 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम बनता है हमारा, तो कभी समय ज़्यादा हो जाता है, कोई गीत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से कई बार कोई श्रोता छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशनली नहीं लेते हम,
1: वो 3-4 बार हुआ है, तो अभी
0: नहीं,
1: मतलब टाइम क्या है वैसे आपका रिकॉर्डिंग का,
0: 11
1: कोई
0: से
1: इतना
0: 12 आपको सुनवाएंगे कल ये गीत।
1: मिलेगा ना सुनने
0: जी
1: को
0: बिल्कुल
1: आप?
0: बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल सुनवाएंगे।
1: ओके, हाँ
0: हाँ, 11 से 12 पूरा सुनिएगा।
1: जी,
0: चलिए,
1: जरूर।
0: फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।

0: आज कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नए श्रोताओं के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काका मेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला गीत हमने आपके लिए लिया है ब्लैकमेल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इसका गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। इस गीत को पसंद किया है सोनागिर दतिया से शशि जैन, श्रेयांश जैन, विपिन जैन और खंडवा से बबली वंदना जैन, डॉक्टर प्रीति प्रतीति जैन, संदीप जैन और माघदी जैन ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। इस समय दोपहर के 12:06:07 हुए हैं। अगला गीत हमने लिया है बंदनी फिल्म से। एसडी बर्मन ने इस गीत को गाया है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने बहुत दूर से। दोस्तों, जब हम मोबाइल ऐप पर आ गए हैं तो बहुत दूर दूर से भी, सात समंदर पार से भी लोग हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हमारे लिए भेज रहे हैं। तो इस गीत का बंदनी फिल्म को सुनना चाहा है बॉस्टन यूएसए से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर पुनीता जैन, आर्य अंकुर जैन। आपने बॉस्टन यूएसए से ये गीत पसंद किया है। इसी गीत को पसंद किया है प्रीत बिहार दिल्ली से, ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन शास्त्री, नमन जैन, शुभम जैन ने। तो आप सभी के पसंद पर बंदनी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश है। सूरज फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। इसकी फरमाइश इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।